कथा कर मुआ दत्ता तेरे गया ना मिंदो हाथ से कल हाय अनुपहाय अनुपहाय अनुपहाय एन्ना नवतिमो में यहाँ से आटा पाये देखा तिया ना ए मिनट तुम आते तिया ने आदरे

आदरणीय तारांगा, कई तरह तेवाल करने के नेक्त मामा, दारुवान के तेवाल, समिया के तेवाल, एत महान सिद्धि के अलावा तहान के नेक नए। गिद्रे दिमाग मुना के ने पूंछे पहलावे ते गोल कराने फोन ने को बोपे इन्ने का, मटी ते ने माम वैद कारिया क्वेला कियला, एते हम दे ए मासे, दुरी निदान मांदी है बलना ए अस्तिक दी है, महानुकंपा वक्त देने ने का, भरत आक्ते

शुभ मंदारम रैक वेवतरंगा पुंची मैंने खेत देखा के कतानियों ने माटा वया आदरे की अनुकट मामाई वया गेंगे ऐतन हम दामुद साकले इत वया मावा वया टे बहगर गया था तेंग वया तो माव पिटासरे एक पीरी में एक निसा बैठ के आलू माटे मुलु जीविते में पाके रहे हुए हैं ඒ දන්නවද මම ශක්තිමත් මාත් එක්ක පැටලුන මේ අහිංසක ජීවිත මං අසරණ කරන්නේ නැහැ දරණිය ගලින් චමරේ